सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तद अनुसार 20 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और पूरे 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है

0: और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान ज्योति।

अक्सर हम जीवन में कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, उन्हें अपना दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये परिस्थितियां भी प्रभु की कृपा का ही एक रूप होती हैं। ये हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमारे भीतर छुपी शक्तियों को जागृत करती हैं, जब हम हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब मन में शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। प्रभु कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चे मन से भक्ति, सेवा और सकारात्मक सोच। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब स्वतः ही प्रभु की कृपा हम पर बरसने लगती है। ज्ञान ज्योति अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: जहां विश्वास है वहां प्रभु की कृपा है, और जहां प्रभु की कृपा है वहां जीवन स्वतः सफल हो जाता है।
1: शनि शब्द की ध्वनि कान में पड़ते ही अज्ञानी मनुष्य भय से कांप जाता है। आनंदित होते हुए कृपा प्राप्ति के लिए शनि का ध्यान करें, पूजा करें, भजन और

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:20 हो चुके हैं।

जब जीवन में सब कुछ अनुकूल हो तब प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, और जब परिस्थितियां कठिन हो तब प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची आस्था है।

जीवन की सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में छिपी होती है। यह शांति केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है। इसलिए हर दिन हर पल ईश्वर को याद करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें और विश्वास रखें

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और साथी कलाकार और संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिली किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी सुबह 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार। सुप्रभात हमीरपुर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह 8 बजे सुनिएगा समाचार प्रभात, 8:15 पर समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 पर सुनिएगा हिमाचल डायरी का आज का अंक।

सुबह 8:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, जिसका विषय है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग। योगाचार्य रहेंगे राजेश कुमार। सुबह 9:20 पर समय रहेगा प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें आप आकाशवाणी शिमला से सुनेंगे, और सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता, जिसका विषय है योग और युवा। सुबह 10:15 पर सुनिएगा एक ही शीर्षक से। सुबह 10:45 पर आप सुनेंगे लोकरंग, और दिन में 11 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। देवधरा के गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे, और 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की भुगतान का विशेष सजीव प्रसारण। शाम के कार्यक्रमों में शाम 5:07 पर सुनिएगा भजन संध्या, शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युफ मंच और शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे देशगान। शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम संस्कृति। आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 और रात्रि 11:00 हिंदी समाचार। रात्रि 10:00 समय रहेगा रंगे गजल कार्यक्रम का और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर, सभी सुनने वालों को नरेश चंदेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब प्रसन्न होंगे और बढ़िया से होंगे। सुबह के 7:05 हो चुके हैं और मैं हाजिर हूँ लेकर के कार्यक्रम जिसका नाम है सुप्रभात हमीरपुर। दोस्तों, कहते हैं खुश रहना है तो दिल बड़ा कीजिए और इच्छाएँ थोड़ी छोटी रखिए। और क्योंकि इच्छाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं हमारी ज़रूरतों से बड़ी हो जाती है तो मन में असंतोष और तनाव जन्म लेता है। और दोस्तों, कहा भी गया है कि खुशियां वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार में छिपी होती हैं। यदि हमारा दिल बड़ा है, यानी हम दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान, सहानुभूति और क्षमा का भाव रखते हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। दोस्तों, बड़े दिल वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर मन में कटुता नहीं रखता बल्कि रिश्तों को महत्व देता है। और वहीं इच्छाएं हमें संतोष का भाव सिखाती हैं, यदि इच्छाएं हमारी छोटी हों। जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को सीमित रखता है, वह उपलब्ध साधनों में भी प्रसन्न रहना जानता है। उसे हर समय दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह जो कुछ भी उसके पास है, उसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद करता है और जीवन का आनंद लेता है। इसलिए खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखें और दूसरों की सहायता करते रहें, अपनों के साथ समय बिताते रहें, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखें। तो ये तो थे कार्यक्रम में आज का विचार, और अब चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अनवर की और आशा भोसले की आवाज़ों में आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत था। रचना नीदा फाजली की थी और संगीत था खय्याम का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
4: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
5: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: बड़ी बहू,
8: ये तुम्हारी ना।
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
8: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
7: और ये
9: मेरी गुड़िया के नाम।
10: पर दादी, आपके नाम?
11: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो।
10: क्या
11: RBI कहता है?
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर, और अब चलते हैं आज के इतिहास की ओर और जानते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। दोस्तों, आज है 20 जून और आज हम मना रहे हैं विश्व शरणार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्र हर साल आज के दिन विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है, ताकि दुनिया भर में संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जा सके।

बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने आज के दिन 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश गैरिसन को कैद कर लिया था, जिसे इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मराठा विद्रोहियों ने ग्वालियर के किले पर आज के दिन 1858 में कब्जा कर लिया था। आज के दिन 1877 में मुंबई का प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस जनता के लिए खोला गया था, जिसे बाद में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आज के दिन 1782 में अमेरिकी कांग्रेस ने देश के आधिकारिक प्रतीक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की मोहर को अपनाया था। आज के दिन 1837 में किंग विलियम चतुर्थ के निधन के बाद उनकी भतीजी विक्टोरिया ब्रिटिश सिंहासन पर आसीन हुई थी और उनके 64 वर्षों के शासनकाल में ब्रिटेन एक महाशक्ति के रूप में उभरा था।

दोस्तों, आज के दिन 1840 में सैमुअल मोर्स ने अपने आविष्कार टेलीग्राफ का पेटेंट हासिल किया था। आज के दिन 1963 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच सीधे संपर्क के लिए हॉटलाइन सेवा स्थापित की गई थी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
9: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
8: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
9: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
8: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
9: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: देवभूमि की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी हमीरपुर। इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर। दोस्तों, आज है विश्व शरणार्थी दिवस। जी हाँ, आज के दिन यानी 20 जून को ये मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य करोड़ों लोगों के संघर्ष, साहस और धैर्य को सम्मान देना है जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह दिन हमें मानवता, करुणा और सहयोग की भावना को और मजबूत करने का भी संदेश देता है। दोस्तों, शरणार्थी वे होते हैं जो अपने देश या क्षेत्र में असुरक्षा और भय के कारण किसी अन्य देश में शरण लेते हैं, किसी अन्य स्थान पर शरण लेने के लिए विवश होते हैं। घर, परिवार और अपनी जन्मभूमि से दूर जीवन बिताना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की कमी प्रमुख होती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और वर्ष 2001 से इस दिवस का आयोजन वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज को उनके प्रति संवेदनशील बनाना है।

0: দা টেলি লক অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
7: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। सुबह के 7:35 हो चुके हैं और अब चलते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवाओं को विफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर विफलता नया सबक सिखाती है। उन्होंने कहा, भारत के युवा अपनी रचनात्मकता के जरिए वैश्विक उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी शुक्रवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े लाभार्थियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और हितधारकों को संबोधित कर रहे थे। नीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। निगम प्रबंधन ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर यह विशेष व्यवस्था की है, ताकि दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी ना हो। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपने निवास स्थान से परीक्षा केंद्र और वापस घर तक निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा 20 से 22 जून तक उपलब्ध रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि पैदल चलने का हक मौलिक अधिकार है, इसमें सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार शामिल है। अदालत ने साफ कहा है कि यह अधिकार वाहनों की आवाजाही से ऊपर है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की अपनी यात्रा पूरी कर ली है और ये यात्रा न सिर्फ उच्च स्तरीय राजनयिक चर्चाओं के लिए बल्कि भारतीय शिल्प कौशल की गहराई और विविधता दिखाने वाले उपहारों के लिए भी उल्लेखनीय रही है। क्षेत्रीय परंपराओं से ओतप्रोत वस्तुओं को उपहार में देकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों को भ्रामक संदेशों से बचने की सलाह देने के साथ आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। छात्रों से कहा गया है कि ब्लू टिक वाले व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ही परीक्षा से जुड़े अपडेट और केंद्र की सूचनाएं भेजी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से फॉरेंसिक डाटा और अपराध स्थलों से जुटाए गए नमूनों के सटीक संग्रहण और सुरक्षित संग्रहण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है।

देश के गांवों की प्रत्येक सड़क, गली और संपर्क मार्ग को पहली बार डिजिटल पहचान मिलने वाली है। पंचायती राज मंत्रालय ने इंट्रा विलेज रोड कोडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जाएगा।

साइबर और KYC धोखाधड़ी पर RBI और हिमाचल पुलिस मिलकर शिकंजा कसेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर ठगी और फर्जी KYC के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। RBI ने बैंकिंग क्षेत्र और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की पहल की है। इस क्रम में शुक्रवार को शिमला में एक कार्यशाला आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के वन अब केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं होंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नए विकास इंजन के रूप में उभर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ कारोबार ने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक नीति की ओर से जारी एक अध्ययन रिपोर्ट ने राज्य में 22,600 करोड़ रुपये की हरित जैव अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का खाका प्रस्तुत किया है।

0: जीवन भाई खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई खुशी तो होगी,
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे।

टी20 विश्व कप की बात करें तो भारतीय ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल टखने में चोट की वजह से टी20 विश्व कप से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह अनकैप्ड लेग स्पिनर प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया है। 23 वर्षीय श्रेयंका को नीदरलैंड के खिलाफ मिली 95 रन की जीत के दौरान चोट लग गई थी। उत्तराखंड की रहने वाली 24 साल की प्रेमा रावत को पहली बार सीनियर महिला टीम में जगह मिली है। भारतीय शटलर अश्मिता चलिया ने कोरिया की किम मिन सुंग को 21-16, 21-18 से हराकर मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में हॉन कियानशी से 21-14, 15-21 और 13-21 से हारकर बाहर हो गई हैं। अश्मिता का यह इवेंट पहला सेमीफाइनल है। भारतीय मुक्केबाज प्राची ने बॉक्सिंग विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पेरिस ओलंपिक की कांस्य विजेता ताइवान की शी यी वू को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। 48 किलोग्राम वर्ग की विश्व नंबर एक मीनाक्षी ने 51 किलोग्राम में कजाकिस्तान की विश्व चैंपियन को 5-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है।

राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 126 खिलाड़ियों का दल उतारने जा रहा है। इन खेलों में भारत की दावेदारी मुख्य रूप से जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, दो बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, अजय बाबू, विश्व चैंपियन बॉक्सर जैस्मिन, ओलंपिक पदक विजेता लवलीना के कंधों पर रहेगी। इस बार इन खेलों में सिर्फ 10 खेल आयोजित किए जा रहे हैं।

0: क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जारी 3 मैचों की वनडे क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 से आगे हैं। आज शनिवार को श्रृंखला के अंतिम और तीसरे वनडे में सीरीज क्लीन स्वीप के साथ भारतीय टीम प्रबंधन की कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। फुटबॉल की बात करें तो दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी की बड़ी गलती ने सह मेजबान मैक्सिको को फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बना दिया है। मिडफील्डर लुइस रोमो के 50वें मिनट में किए गए गोल की मदद से मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से पराजित किया।
1: एक बात बताइए,
2: क्या
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?

श्रोताओं, महावानरों पर नई खोज हुई है और हर प्रजाति के सोच का तरीका अलग अलग इसमें पाया गया है। मनुष्य की बुद्धिमता और उसके विकास क्रम को समझने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ला और इन जैसे और महावानरों का अध्ययन कर रहे थे। आम धारणा ये है कि यदि कोई मानसिक क्षमता केवल मनुष्यों और उसके सबसे निकट संबंधी प्राइमेट्स में दिखाई देती है तो वह विकास क्रम में अपेक्षाकृत बाद में विकसित हुई होगी, लेकिन एक नए अध्ययन ने ये संकेत दिए हैं कि महावानरों की संज्ञानात्मक क्षमताएं न केवल एक दूसरे से भिन्न होती हैं, बल्कि एक ही प्रजाति के अलग अलग व्यक्तियों में भी अंतर होता है।

महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाजों में आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत था। और इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर यहीं पर संपन्न हो रहा है। अब नरेश चंदेल को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज़।

0: सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हम सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
7: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
6: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
6: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
9: We have been able to achieve that in the first.
10: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
9: They are all designed in India now.
8: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
11: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
8: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने अनुपात

0: पालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rai Rangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rai Rangpur, Akashwani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar.

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक।

हिमाचल डायरी में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं नरेश चंदेल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान की एक वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च जोखिम वाले गांवों और वार्डों में संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग में अग्रणी है। हिमाचल प्रदेश सरकार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा मशीनरी व उपकरणों की खरीद पर राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 100% दिव्यांगता वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश के करीब 7000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। शुक्रवार को सचिवालय में स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह घोषणा की।

किसानों और बागवानों को अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल देने से इनकार नहीं किया जाएगा। उन्हें अब प्रतिदिन 200 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। प्रदेश सरकार के आदेशों के मुताबिक किसान, बागवानों व उद्योगों को पेट्रोल या डीजल देने से इनकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें मेटल कंटेनर लाना होगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने का काम एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंसल्टेंट को सौंपने की तैयारी चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार ने ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति के लिए 50 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। यह राशि हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड के माध्यम से नियुक्त कंपनी को दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। रोहतांग दर्रा में बर्फ के फाहे गिरे, जबकि लाहौल की चंद्र घाटी, कुल्लू और शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस बीच किन्नौर में भारी भूस्खलन और चिड़गांव में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तो ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी हम स्वास्थ्य से जुड़े, हमारे जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अगले कल यानी 21 तारीख को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। और ये खूबसूरत विचार भी हमें मोटिवेट कर सकता है कि योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं बल्कि मन के बिखराव को समेटना भी होता है। योग के जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सकारात्मक रख सकते हैं। तो इस योग का इतना महत्व है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों को प्रेरित करना, ये हमारे कार्यक्रम का एक लक्ष्य भी रहता है और उद्देश्य भी है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आज योग के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश जी। ये योगाचार्य हैं और ये योग की पद्धति और योग हमारे उम्र के हर पड़ाव में किस तरह से मददगार सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। राजेश जी, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत।
1: बहुत धन्यवाद
0: जी। इंटरनेशनल योगा डे की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 21 जून ही नहीं बल्कि हम तो यही कहेंगे कि हर रोज योग को अपनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब जून का महीना शुरू होता है ना, तो एनर्जी लेवल जो है ना वो एक अलग ही स्तर पर होता है। और जैसे ही जून का महीना खत्म होता है, हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, और इस तरह करते करते फिर पूरा साल बीत जाता है और बहुत सारी शारीरिक परेशानियों से भी हम दो चार होते रहते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार की इंटरनेशनल योग डे की, योग दिवस की थीम क्या है?
1: बहुत अच्छा, आज आपने जो ये कार्यक्रम रखा है इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को कई नई जानकारियां मिलने वाली हैं। और 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं हुआ करता था, यद्यपि योग था, लेकिन 2014 में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 27 सितंबर 2014 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में एक प्रस्ताव रखा पूरी दुनिया के सामने कि क्यों ना योग को घर घर अपनाया जाए, क्यों ना इस योग को एक ग्लोबली मुहिम बनाया जाए। तो ये प्रस्ताव रखने के बाद 11 दिसंबर 2014 में ही 171 कंट्री ने इसको स्वीकार कर दिया जी। और उसके बाद पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा
0: जी।
1: और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि इस बार की जो थीम है, हर बार कोई ना कोई थीम होती है, इस बार भी एक थीम रखी है, वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मतलब जो वृद्धावस्था आती है हमारी, वो किस तरह से खुशहाल बने, उसकी एक थीम रखी है, उसके ऊपर कैसे हम कार्य कर सकते हैं, अपना जीवन खुशहाल कैसे बना सकते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारा शरीर, हमारे मसल्स कमजोर होने लगते हैं और वो एनर्जी, वो स्फूर्ति नहीं रहती जो युवावस्था में होती है। या फिर कई बार हम मान भी लेते हैं कि अब हम वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, वो भी साइकोलॉजिकली कुछ इस तरह का काम करती है कि हमें लगता है कि हमारी एनर्जी कम हो रही है। लेकिन आपने जैसे कहा कि इस बार का हमारा थीम भी है कि जो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं लोग, उनको मोटिवेट करना है कि वो स्वस्थ भी रह सकें और पूरा एनर्जेटिक भी रह सकें और जिंदगी के इस जो पड़ाव है इसका भी भरपूर आनंद ले सकें। तो सबसे पहले तो राजेश जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि योगा की टेक्निक्स, आसन और इसके बेनिफिट्स क्या हैं?
1: कोई भी व्यक्ति इस संसार में जब जन्म लेता है, कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है
0: जी।
1: और जो कॉमन एक बोले कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सभी का एक कॉमन गोल होना चाहिए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो आपको अपने आप को जानना होना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो वंस ओन ट्रू सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है, उसको जानना ही एक उद्देश्य हो जाता है। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए एक सुंदर काया चाहिए। सुंदर काया आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। आज के समय में कई बार हम कहते हैं कि आप अपना जीवन यूं ही किसी के कहने पे या फिर अपने आलस में बिता देते हैं। सुबह कितने बजे उठना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या सुनना, क्या विचार करना, ये सारा आपका कर्तव्य है कि वो शुद्ध हो। हम कहते हैं कि जीवन मेरा है, आपको क्या। लेकिन जीवन आपका नहीं है, आपको जन्म आपके माँ बाप ने दिया, आपके जो वस्त्र है वो किसी और ने आपको दिए, आपका भोजन है वो किसी किसान ने दिया, जीवन आपका समाज का है, जीवन आपको किसी और ने दिया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको अपने शरीर को बचाना है, स्वस्थ रखना है, ताकि हम किसी और के भी काम आ सके।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा ही नहीं होता, हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए ये तो कर सकते हैं कि हम खुद को स्वस्थ रखें। और हर व्यक्ति अगर इस तरह का संकल्प लेता है तो हमारा भारत देश जो है वो तरक्की के एक नए आयाम गढ़ सकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिक स्तर जो है वो बहुत तरक्की की बुलंदियों तक ले जाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की शुरुआत कब करनी चाहिए?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योग की शुरुआत के लिए वैसे तो आप सुबह में या शाम में, कभी भी, जब भी आपको समय लगे। पूर्व समय में हमारे शास्त्रों में भी कहा है, ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला होती है वो शरीर के लिए शुद्ध हवा देने वाली होती है, मस्तिष्क को उस समय ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पूरे दिन की अपेक्षा सुबह में मिलता है
0: जी।
1: इसलिए सुबह का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। लेकिन आज के समय में कई लोग, आपने देखा होगा, भाग दौड़ भरी जिंदगी है
0: जी।
1: कई लोगों का समय ही इस तरह का है कि कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई दिन में आ रहा है, ऐसे दिन भर में व्यस्त रहता है। तो उस पर ना जा करके जब भी आपको समय लगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उससे पहले 3-3.5 घंटे पहले भोजन किया हो। लेकिन आदर्श जो समय है वो सुबह का रहता है। खाली पेट भोजन ना किया हो, हल्का सा पानी पिया हो, शौच इत्यादि से निवृत्त हो करके उसके बाद आप योग अभ्यास कर सकते हैं
0: जी। और अवधि की बात भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो योग सिखाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना एक सेशन लेते हैं, तो जैसे वो करते हैं हम फर्स्ट टाइम में भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं और हमारा शरीर इतना थक जाता है कि हम दोबारा दूसरे दिन फिर सोचते ही नहीं है कि हमने योग करना है। तो अवधि और किस तरह से योग की शुरुआत करनी चाहिए वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, शास्त्र में एक कहावत कही गई है कि देखा देखी कार्य योग, छीजे काया बड़े रोग
0: जी।
1: आज के समय में आप देखेंगे कि कितने सारे यूट्यूब चैनल हो गए हैं, कितने सारे सोशल मीडिया पे किस भांति भांति की एक्सरसाइजेज हो रही है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू योगा। तो उसको ले लेते हैं कि योग कर रहा है, लेकिन योग साधारण अभ्यास नहीं है, साधारण एक्सरसाइज नहीं है। योग एक जीवन जीने की कला है। हाँ, योग अभ्यास में आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, ये षटकर्म है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो ऐसी क्रिया करनी किसी एक, जो जिसको हम कहते हैं कि एक गुरु के सानिध्य में या फिर कोई एक्सपर्ट है उसके सानिध्य में योगाभ्यास किया जाना चाहिए। देखा

0: देखिए में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उसका शारीरिक जो लेवल है वो अलग होता है, बुजुर्गों का अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है, और अलग अलग एज में अलग अलग फैक्टर रहते हैं। तो आपके लिए कौन सा अभ्यास फिट है, सही है, वो आपको आपके जो ट्रेनर होंगे या फिर जानकार व्यक्ति होंगे उनसे आप जो है अभ्यास सीख सकते हैं। यही कारण है आज के समय में कि हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि हमने 4 महीने 5 महीने 1 साल हो गया हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वो होता ये है, मानो किसी व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर किसी दूसरी समस्या से जूझ रहा है, तो उस व्यक्ति को कौन से अभ्यास करने चाहिए कौन से नहीं, लेकिन वो देखा देखी में करे जा रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें देख करके ही आपको योग अभ्यास करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और वैसे भी टीवी पे या फिर मोबाइल पे जब हम देख रहे होते हैं तो हम तो उनको देख रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं देख पाते, हम किस तरह से क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो नहीं बता पाते हैं। तो यही कारण रहता है कि फिजिकली अपने गुरु के सामने बैठ के या हमारे जो योग के एक्सपर्ट हैं उनके सामने बैठकर जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बारीकियां जो हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं, तो हम अच्छा जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। आगे तो फिर वो हमें सजेस्ट करते ही हैं कि किस तरह से बढ़ाना है और किस तरह से इसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। राजेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल के समय की अगर बात कर जब करते हैं ना, तो वातावरण जो है वो उतना शुद्ध नहीं रह गया जितना पहले होता था, तो इसके चलते बहुत सारी श्वास से संबंधित बीमारियां जो है वो आम तौर पर लोगों में देखने में आ रही हैं। तो योग के जरिए हम लंग्स की या फेफड़ों की डिजीजेज को, बीमारियों को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: आज के समय में अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे तो जो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सारी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं या फिर आने वाले निकट भविष्य में होने वाली है। आप जो भोजन कर रहे हैं, आपके घर में जो सब्जी आ रही है, आपको नहीं पता उसमें कौन से पेस्टिसाइड, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया होगा। आप जो फ्रूट्स खाते हैं उसका हमें पता नहीं वो किस तरीके से बाजार से आया होगा, घर तक पहुंचा होगा। इवन की हवा भी पॉल्यूटेड हो चुकी है। बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटी में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, इवन की दिल्ली को तो मोस्ट पॉल्यूटेड एयर एक इंडेक्स आया था अभी कुछ समय पहले, तो वो इतना दूषित हो चुका था कि वहाँ रहना, जो व्यक्ति अस्थमेटिक है उनको रहना ही वहाँ पे डॉक्टर कहते थे कि वहाँ उस हवा में आपको नहीं रहना है, सेफ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल एक चीज करनी है, वो है योग का सहारा। योग अभ्यास करना पड़ेगा आपको। योग अभ्यास के लिए आपको पहले तो सुबह का समय, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन रेट कम रहता है, हवा का प्रेशर शुद्ध रहता है और जो पॉल्यूशन है वो बैठ जाता है, तो सुबह के समय योग अभ्यास करने का सबसे उचित समय रहेगा। और पॉल्यूशन से हटने के लिए जितना हो सकता है आपको शुद्ध, जैसे हम जूस पीते हैं उसको हटा करके आप डायरेक्ट फल ले सकते हैं, कई बार हम विटामिन की गोली लेते हैं, आप डायरेक्टली किसी न किसी माध्यम से डायरेक्ट विटामिन लीजिए। तो इस तरीके से अपना ध्यान रखते हुए योग अभ्यास सुबह के समय करना और भोजन क्या करना उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
1: जी, और लंग्स की बीमारियों के बारे में हम कौन सा योग जो है, कौन सा प्राणायाम जो है अपना सकते हैं ताकि हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें।
0: एक दिन में सामान्य व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है
1: जी।
0: और ये जो हमारा जीवन है वो ये नहीं है कि हमें 100 वर्ष दिए गए हैं, 50 वर्ष दिए गए हैं, 70 वर्ष दिए गए हैं। ये जो हमें आयु दी है वो इन द टर्म्स ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे दिया है। जितना जल्दी आप अपने श्वासों को खर्च करेंगे उतना जल्दी हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी श्वासों को बचाना बड़ा आवश्यक है। श्वासों को बचाने के लिए हमारे शास्त्रों में प्राणायाम का विधान बताया है। प्राण का आयाम यानी प्राणों का विस्तार करना, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, जीवन को किस तरह से बढ़ाना है, एज को कैसे बढ़ाना है, उसका विज्ञान श्वासों में छिपा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नाड़ी शोधन अभ्यास करना चाहिए। अब नाड़ी शोधन भी अनेकों प्रकार की आप सोशल मीडिया में देखेंगे करवाया जाता है, लेकिन शास्त्र विधि के द्वारा आपको नाड़ी शोधन अभ्यास करना चाहिए। कितनी टेक्निक में आपको श्वास लेना है, कितना आपको रोकना है, कितना आपको छोड़ना है, तो इसका अनुपात 1:4:2 इस अनुपात में आपको श्वास लेना। एग्जाम्पल, जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको सपोज कीजिए कि आप 5 सेकंड में आप श्वास लेते हैं, उसका 4 गुना आपको रोकना चाहिए, यानी 20 सेकंड आपको रोकना और उसके 10 सेकंड आपको छोड़ना, यानी कि 2 गुना उसको छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी श्वासों की गति लंबी होगी। जब श्वासों की गति लंबी होगी तो आपकी जीवन की आयु भी जो है आपकी लंबी होगी। और इस तरीके से अलग अलग प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, श्वासों को तेजी से लेना छोड़ना, तेजी से लेना छोड़ना, इससे हमारे लंग्स की जो एल्वोलाइज होती है, जो गुच्छे होते हैं, वो कई बार ब्लॉकेजेस हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा आपको पॉल्यूशन इतना है कि उसमें जो है कि लंग्स डैमेज हो जाते हैं, तो उससे वो जो ब्लॉकेजेस है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, तेजी से श्वास लेना छोड़ना। भस्त्रिका, जैसे भस्त्र होता है, पुराने समय में एक लो,

0: आपका सारा वजन आपके घुटनों पे रहेगा, आपके जो बाजू हैं उसमें जो कर्व पड़ता है वो आपके एल्बो पे पड़ता है, तो इस कारण से आपके जो जॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए थोड़े थोड़े जो सूक्ष्म व्यायाम है उसका अभ्यास करना चाहिए, जैसे रिस्ट रोटेशन करना, घुटना संचालन करना, थोड़े से स्क्वाट करना, थोड़े से पुशअप्स करना, धीरे धीरे करके। मानो आपकी एज ज्यादा है तो एक एक दो दो से शुरू करके 20-25-30 ऐसा कर सकते हैं,
1: जैसा इजी जो शरीर को,
0: जितना आपको इजी लगे, जितना आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आप 50 कर देंगे तो उससे आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा। तो धीरे कर से एक से शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ अभ्यास भी हैं, आसन हैं, उनका अभ्यास भी करना चाहिए। जैसे हलासन है, जैसे दूसरा है एक चेयर पोज है, उत्कटासन है, तो इस तरीके से कुछ आसन है जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी। और बढ़ती उम्र में याददाश्त कमजोर होना एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए प्राणायाम किस तरह से या योग जो है ये किस तरह से फायदेमंद होता है?
0: जिस तरीके से आज के समय में डिमेंशिया बढ़ रहा है, याददाश्त जो क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही हैं, एक तो इसका कारण हो सकता है कि लगातार हम कॉन्शियसली कोई भी काम नहीं करते हैं। इसी यही कारण है कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ काम बोला फिर भूल जाते हैं, क्योंकि 2-3 जगह पे हमारा माइंड डाइवर्ट हो चुका है। एक काम तो हम ये करें कि एक समय में केवल एक काम को ही करें, उसमें 100% दे पाएंगे तभी वो जो कि हमारी मेमोरी में बैठेगा। दूसरा, ऐसे प्राणायाम जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, उसे हमारे जितने भी सिक्रेशन है हमारे माइंड से रिलेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, वो सिक्रेट होते हैं जो कि हमें मेमोरी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम 3-4 बार 5 बार ऐसे करना। ओम का उच्चारण आप ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा ओम का उच्चारण करेंगे उतने ही तरंगे आपके मन को शांत करेगी, वो मेमोरी बढ़ाने के काम आती है
1: जी। और अगर बात करें बढ़ती उम्र में नींद कम आने की, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं योग के माध्यम से, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: अच्छी नींद लेने के लिए हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रयोग भी किए हैं, इसमें हमने काफ़ी लोगों को शवासन, जिसको डेड बॉडी पोज भी कहते हैं, उसका अभ्यास करवाया। तो इसमें देखा है कि वैसे ही इसमें जागरूक होकर के इसमें ध्यान करना पड़ता है, आप पूरे बिल्कुल शवासन में लेट जाते हैं पीठ के बल, तो उसमें आपका इंस्ट्रक्टर जो बातें करता है, यानी उसको कहते हैं सजग ध्यान करना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमने देखा कई लोग सो जाते थे। अब सोते क्यों थे? इसका ये कारण नहीं है कि उनका ध्यान नहीं लगता था, इसका कारण ये था कि उनको सही से नींद नहीं आती थी। वो श्वासों के साथ जैसे ही आप जोड़ते हैं वैसे नींद आना शुरू होती है, रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए आपका श्वासों पे ध्यान होना, शवासन का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और इसके बावजूद भी दिन भर की भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि समय नहीं मिल पाता है, तो समय नहीं मिल पाने से केवल 5-7 मिनट आप श्वासन का अभ्यास कीजिए। रिलैक्स होकर कोई आप म्यूजिक लगा दीजिए, बिल्कुल शांत कोई फ्लूट लगा दीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी और नींद भी आएगी
1: जी। और महिलाओं में जब उम्र बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, खासकर मीनोपॉज के बाद जी। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी बड़ी आम होती है, और बहुत सारी सेहत संबंधी समस्याएं, तनाव और ये सारी चीज़ें जो हैं महिलाओं को भी उतना ही परेशान करती हैं। तो योग द्वारा हम किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: मेनोपॉज में ये, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, सभी महिलाओं को इससे गुजरना है, तो इसके लिए योग यानी प्राणायाम मुख्य रूप से बहुत लाभकारी है। इस समय में क्या होता है कि कई बार शरीर की गर्मी बढ़ जाती है या कई बार की चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है, इस तरीके से अनेकों समस्याएं होती हैं। तो इसमें प्राणायाम का अभ्यास करना, मेडिटेशन का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप अपने आप को स्थिर रख पाए, चिड़चिड़ापन जो शरीर की कंपन है वो धीरे धीरे कम होती जाए। इसलिए प्राणायाम उनको आवश्यक रूप से करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास उन्हें करना चाहिए
1: जी। और प्रशिक्षित योगाचार्य के
0: सानिध्य में ही ये सारी चीज़ें होना आवश्यक
1: जी। और अब थोड़ा सा समय बचा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माइंडफुलनेस के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए हम किस तरह से योग को अपना सकते हैं।
0: स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने स्वयं अपने आप ही कह दिया, माइंडफुलनेस होना बड़ा आवश्यक है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप 100% फोकस है। 100% फोकस आपका नहीं हुआ, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो अवेयर, उस समय आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर हों, आप क्यों करने जा रहे हैं, उसका क्या पर्पज है, आज के समय में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि बिना जाने समझे कोई भी कार्य कर लेते हैं। इसीलिए जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है, श्वासों के साथ जितना आप कनेक्टेड होंगे उतना ही आपको शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और आपको डिसीजन मेकिंग पावर बनेगी
1: जी। राजेश जी, अब कार्यक्रम में और समय नहीं बचता कि हम आपसे और जानकारियां ले सके, हम यही कहना चाहेंगे कि योग हमें निरोग रखता है और

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, अब से लेकर 9:20 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज

0: अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है, मेरे अंदर शायर पैदा हुआ।
3: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 होने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
5: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
4: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
5: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
4: जानकारी लें अधिकार जाने,
5: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
7: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
6: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
9: अच्छा,
8: इसमें क्या होगा? इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
9: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
8: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
9: अच्छा,
8: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत 2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित। और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को पाने में युवाओं का बड़ा योगदान होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
1: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
0: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है।
2: रोजगार को बढ़ाने के लिए कदम जो है किया गया, इसको हमने हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया है और लगभग कोई 5,500 कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश के लाभान्वित हुए हैं और कोई 5.5 करोड़ रुपए के करीब जो है इंसेंटिव के रूप में राशि जो है वितरित की गई है। तो बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा कदम है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आए, सर्विस सेक्टर में आए, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, इनको मेडिकल कवर भी दिया जा रहा है और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने के आसार है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों

0: के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि भारत की महान कलात्मक परंपराओं में कांगड़ा लघु चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। वे कल शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कांगड़ा लघु चित्रकला शिविर में निर्मित कलाकृतियों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अमूल्य कलात्मक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, ज्ञान व परंपराओं के संरक्षण के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों की सराहना भी की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विधानसभा परिसर के समीप बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस फ्लाईओवर परियोजना के प्रगति कार्यों के निरीक्षण कार्यों के दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से यातायात की सुगमता होगी और संपर्क व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित। कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने काजा स्थित ITBB बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने DFO स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र के जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालुंग गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिचम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू, हुंडिंग, लालुंग और काजा खास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 22वीं बैठक कल शिमला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव के पंत ने की। बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंत ने कहा कि बैठक में जल की हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नीट अभ्यर्थियों को एचआरटीसी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा, 20 से 22 जून तक एडमिट कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। हिमाचल दस्तक के शब्द है, अब बीबीएमबी में हिस्सेदारी और एरियर के लिए लड़ेंगे सीएम सुक्खू। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के जंगलों में 22,600 करोड़ का खजाना, अर्थव्यवस्था के लिए बनेगा संजीवनी। पंजाब केसरी बतौर जयराम ठाकुर लिखता है, प्रदेश के हितों को बेच हितेशी बनने का कर रहे ढोंग मुख्यमंत्री। बघाट बैंक की बीओडी को सरकार ने किया सस्पेंड, 30 दिन में मांगा जवाब, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत 2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित। और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं, अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह।

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: दासू भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटीए ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवामिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता।

लघु वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की वार्ता का विषय है योग और युवा। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसके युवा। किसी देश का वर्तमान और भविष्य उसके युवाओं की सोच, ऊर्जा और कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। आज के आधुनिक युग में युवा वर्ग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पढ़ाई, प्रतियोगिता, रोजगार, तकनीक का बढ़ता प्रभाव, तनाव, अनियमित जीवन शैली और शारीरिक निष्क्रियता जैसी समस्याएं युवाओं के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही है। ऐसे समय में योग एक ऐसी प्राचीन और वैज्ञानिक विधा है जो युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है जो व्यक्ति को संतुलित, अनुशासित और सकारात्मक बनाती है। श्रोताओं, योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा है, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना। योग हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज संपूर्ण विश्व योग की महत्ता को स्वीकार कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना इसकी वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

आज का युवा तनाव, अवसाद, अनिद्रा, मोटापा, मधुमेह और अन्य कई समस्याओं से जूझ रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग के कारण शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आता है। योग हम सबको स्वस्थ शरीर प्रदान करता है, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है, आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ाता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है, अनुशासन और आत्मसंयम सिखाता है। योग जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है।

श्रोताओं, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। योग शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला और स्फूर्तिवान बना रहता है। युवाओं के लिए ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन और प्राणायाम जैसे योगासन अत्यंत लाभकारी हैं। ये शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों से बचाव करते हैं। योग के माध्यम से

शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, पाचन क्रियाएं सुचारू रहती है और व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता सामान्य समस्या बन गई है। परीक्षा का दबाव, करियर की चिंता, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाएं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करते हैं। प्राणायाम, ध्यान, अनुलोम विलोम जैसी क्रियाएं मन को शांत करती हैं तथा तनाव और अवसाद को कम करती हैं। नियमित योगाभ्यास से युवाओं की स्मरण शक्ति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

श्रोताओ, योग मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है और व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करने की शक्ति प्रदान करता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। योग व्यक्ति में अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास करता है। युवावस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। यदि युवाओं में अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच विकसित हो जाए तो वे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। योग उन्हें सही दिशा प्रदान करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है।

आज विद्यार्थियों के सामने प्रतियोगिता और पढ़ाई का अत्यधिक दबाव है, ऐसे में योग उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। योगाभ्यास से मस्तिष्क शांत रहता है और पढ़ाई में मन लगता है। विद्यार्थी बेहतर ढंग से विषयों को समझ पाते हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि आज कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। करियर के क्षेत्र में भी योग युवाओं को तनाव मुक्त और ऊर्जावान बनाए रखता है, जिससे वे अपने कार्यों को अधिक दक्षता और उत्साह के साथ कर पाते हैं। वर्तमान समय में अनेक युवा धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति उनके स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए घातक है। योग व्यक्ति में आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच विकसित करता है, जिससे वह नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। खिलाड़ियों के लिए योग अत्यंत लाभकारी है। यह शरीर की लचक, संतुलन और सहन शक्ति को बढ़ाता है। योग से मांसपेशियों की थकान कम होती है और शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। आज विश्व के अनेक खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण में योग को शामिल कर रहे हैं। योग खिलाड़ियों की एकाग्रता और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। श्रोताओं, मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। घंटों स्क्रीन के सामने बैठने से शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। योग युवाओं को डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना सिखाता है और यह उन्हें वर्तमान में जीना और अपने समय का सही उपयोग करना सिखाता है। योग के माध्यम से युवा तकनीक का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। भारत की प्राचीन धरोहर योग आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दिन विश्व के अनेक देशों में लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष

2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है और इससे योग की महत्ता और बढ़ी है और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता पाई है।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही शीर्षक से।

एक ही शीर्षक से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल और आज के कार्यक्रम का शीर्षक है फूल। जी हां, फूल जिसमें मोहब्बत की मासूमियत हो और जज्बातों की खूबसूरती हो। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं तो दिल अपनी बात फूलों के सहारे कहता है।

दोस्तों, मौसम में अगर फूलों की खुशबू घुल जाए, बाहर ही अपनी रंगत बिखेर दे और किसी मुस्कान दिल को छू जाए, तो जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत की तरह लगने लगती है।

देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है एक ही शीर्षक से। और दोस्तों आज का शीर्षक है फूल। दोस्तों फूल केवल पौधों का एक हिस्सा नहीं होते बल्कि ये प्रकृति की मुस्कान प्रेम शांति और खुशियों के प्रतीक हैं। गुलाब अपनी मोहब्बत का संदेश देता है, कमल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है तो चमेली और रजनीगंधा अपनी भीनी भीनी खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर देते हैं।

दोस्तों, फूल प्रकृति की सबसे खूबसूरत सौगात है। उनकी रंगत आंखों को सुकून देती है, उनकी खुशबू दिल को महका देती है। यही वजह है हिंदी फिल्म संगीत में फूलों का जिक्र अक्सर प्यार, अपनापन और भावनाओं के प्रतीक के रूप में होता है।

दोस्तों, फूलों का क्या है, खिलकर बिखर जाते हैं, मगर अपनी खुशबू से दिलों में उतर जाते हैं। हर शाख पे फूल हो, हर दिल में प्यार हो, जिंदगी का हर मौसम खुशियों का त्योहार हो।

दोस्तों, फूलों की तरह महकते रहिए और हर एक राह में मुस्कुराहट बिखेरते रहिए। इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम एक ही शीर्षक से यहीं पर संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं,

लोक गीतां पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुनने आले सारे श्रोतियां जो नरेश चंदेल दी राम राम कार्यक्रम दी शुरुआत करदे हन स्वाति शर्मा दे गाए इस पहाड़ी लोक गीत करने।

0: वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को पाने में युवाओं का बड़ा योगदान। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
1: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
0: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा निश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने कादा स्थित आईटीबीपी बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने डीएफओ स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र के जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालुंग गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिचम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू हुंडिंग लालुंग और कादा खास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीकंधा फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगिराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगिराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी
1: बढ़ाया जाए,
0: है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय
1: थोड़ा
0: की?
1: सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20 मिनट,
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकाले तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी
0: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।
0: हाँ,
1: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के। तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
0: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? भ्रामरी, शीतली,
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, वस्त्रिका करके,
0: हाँ,
1: अपने फेफड़े
0: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
1: कपालभाति,
0: सबसे पहले कपालभाति जी,
1: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
0: इतने सारे करने।
1: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
0: अच्छा,
1: ये पूरा पैकेज हो गया
0: जी,
1: ये
0: जी, जी।
1: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
0: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
1: जी,
0: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
1: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
0: जी,
1: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
0: अच्छा,
1: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
0: अच्छा,
1: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
0: जी जी,
1: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
0: जी,
1: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
0: जी,
1: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है, तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अच्छा,
1: जो हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं। जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है
0: जी।
1: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
0: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं
1: जी
0: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
1: हाँ,
0: करके दिखा नहीं सकते,
1: दिखा नहीं
0: पर
1: सकते।
0: भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों
1: हाँ,
0: से आंखों
1: को
0: ढका
1: बंद
0: जाता
1: करते
0: है।
1: हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है,
0: जी
1: मुंह बंद रखना है,
0: हाँ
1: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
0: जी,
1: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है,
0: हमिंग
1: बटरफ्लाइट
0: करना
1: की
0: है।
1: तरह।

0: जी, और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी
1: में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है,
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है।
1: फिर उसके
0: तो
1: बाद
0: प्राणायाम की बात हुई,
1: जी
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए।
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा
1: योग का मतलब ही है जोड़ना,
0: जी
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब 2 स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
0: अच्छा
1: फिर दूसरे दिन 2 राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप 2 राउंड 3 राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए।
1: बढ़ाते
0: नहीं,
1: जाइए।
0: कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: जी ये सही कर रहे हैं, तो
0: जी
1: जोश में आकर होश नहीं खोना है।
0: बिल्कुल
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं,
0: जी
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
0: जी सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है।
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है।
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना।
1: जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी
1: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंगासन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता
1: मिल
0: है
1: जाता है।
0: जी।
1: ये
0: तो
1: सबसे
0: ये एक
1: इम्पोर्टेंट है
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज़्यादा जोश में रहते
1: जोश
0: हैं।
1: में रहते हैं। और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें, कभी कभी क्या है कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं तो
0: जी,
1: उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब
0: और
1: से
0: आपकी
1: वो
0: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके
0: वो
1: अनुसार।
0: बाकायदा ईमानदारी से
1: जी
0: बताना है कि
1: हाँ,
0: भाई ये
1: जिन
0: समस्याएं
1: जिनकी
0: हैं।
1: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
0: हाँ, मैं वही
1: इन
0: पूछने आ रहा
1: सबको।
0: था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे।
1: कि बुज़ुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुज़ुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफ़ी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
0: जी,
1: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
0: नियमित
1: वो
0: रूप से करते आए
1: नियमित
0: हैं।
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह को अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
0: जी, मैं समझ गया।
1: जी
0: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए।
1: कोई भी चीज़ इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को, कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं,
1: जी
0: लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
1: जी
0: और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं, और उनको क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं,
1: जी
0: टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो
1: जी
0: लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं
1: जी
0: वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
0: जी
1: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज़ पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए, सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज़ चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर है, उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 20/20 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
0: जी
1: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय, दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत ही
0: आपने इस तरह से वर्गीकरण
1: फायदेमंद
0: कर
1: है।
0: लिया है,
1: जी
0: अलग अलग लोगों के लिए
1: हाँ,
0: अलग
1: जिससे
0: अलग
1: सब
0: तरह के
1: सभी
0: योग जो
1: स्वस्थ रहें।
0: है तय कर लिए आपने।
1: जी
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का
1: जी
0: काम आप कर रहे हैं।
1: जी
0: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा
1: जी
0: है। बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है? क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
1: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, नहीं पूरे विश्व में, योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया है
0: जी
1: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग
0: जी
1: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना, इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है। और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
0: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
1: जी रही बात वज़न कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वज़न को कम कर लें, तो ऐसा
0: चमत्कार
1: चमत्कार और संभव नहीं है,
0: जी।
1: क्योंकि जितने समय में जो वज़न बढ़ा है,
0: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
1: हाँ
0: फूड
1: पाँच
0: खा
1: साल में दो साल में
0: खा
1: हाँ इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
0: के जी
1: और योग से जो वज़न आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपको सूर्य नमस्कार से। उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
0: अच्छा
1: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
0: जी
1: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है। तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियाँ अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
0: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
1: कहीं भी कर
0: स्कूल में
1: सकते
0: हो,
1: हैं
0: कॉलेज में हो,
1: आप,
0: घर पे हो।
1: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
0: जी
1: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
1: जी
0: खड़े हो जाते हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: सड़क के किनारे के किसी भी चीज़ों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वज़न बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाज़त देते हैं कि वो इस तरह से मज़े से बाहर खाता पीता रहे?
1: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
0: जी
1: मस्तिष्क से ही।
0: जी
1: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने मतलब कि ज़बरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
0: जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।
0: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
1: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे। लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है, आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं।
0: जी
1: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे, आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं। और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
0: बिल्कुल। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
1: जी
0: मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
1: जी
0: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
1: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट

0: बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियाँ हैं,
1: जी
0: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है। उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं,
1: जी
0: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नज़रअंदाज करती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
0: जी,
1: तरह की
0: मन भी कई बार अशांत रहता है।
1: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है जो योग, मेडिटेशन और
0: क्या
1: प्राणायाम।
0: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं कर सकती है? बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
0: जी
1: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं।
0: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
1: हाँ,
0: है।
1: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
0: जी
1: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फ़ायदा होता है,
0: जी
1: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है,
0: जी
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
0: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
1: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
0: मतलब हर साल 21 जून को करते
1: 21 जून को
0: हैं
1: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के
0: हाँ
1: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
0: हाँ
1: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं।
0: जी
1: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
0: जी
1: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
0: और
1: और
0: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
1: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
0: जी
1: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देवधरा के गीत।

देवधरा के गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संजीव धीमान के स्वर में इस पहाड़ी लोकगीत से।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देवधरा के गीत। आइए अब सुनते हैं राजेश कुमार के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देवधरा के गीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में कालिया फिल्म के इस गीत से। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत है आर डी बर्मन का।

देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कर्ज़।

सैनिक भाइयों, अब सुनते हैं आशा भोसले को। एक मैं और एक तू फिल्म के इस गीत में बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वरों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत है, रचना फैज अनवर की, संगीत नदीम श्रवण का।

इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न हो रहा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब से लेकर 2 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाह

ये वाला सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश, लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, ज़मीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकहीं झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग न जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरह के तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूँ, और यहाँ तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफ़र में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मज़े किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज़ हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नज़र ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतज़ार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफ़र का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का। तो

से बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं दुकान के अंदर।

अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था, और जहाँ तहाँ कैसे करके इन

इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज़ भी उनका ठीक ठाक था, फ़ोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

0: मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गाँव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में

0: राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: का कॉरिडोर बनना है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेयर

0: डिस्कशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरी स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और SD बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग को सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाना जरूरी है। आज शिमला में लोक निर्माण विभागों में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।
2: पीडब्ल्यूडी के साथ काफी इंटरेक्टिव सेशन मैंने अपने डिपार्टमेंट मंत्री के साथ भी किए, लेकिन कई चीजों को हमने सुधारात्मक तरीके से आगे ले वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हमें कैसे सामना करना पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी की भूमिका हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बहुत सराहनीय रही।
1: संवाद सत्र को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाना वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर भारत में नई कार्यप्रणालियों व नवाचार आधारित समाधानों की आवश्यकता है। इस संवाद सत्र में हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
3: सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार आईटीबीपी की सेवाएं भी ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
6: कल नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है उसकी पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर ली और जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर जंग सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहां पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी तकलीफ से ना आए।
1: कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। अब आप सुनेंगे शिमला जिले की चिट्ठी। लेखक हैं योगराज शर्मा और वाचक हैं शशि चौहान।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने 1 जून को लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन दल को कुल्लू की माउंट देव टिब्बा के लिए रवाना किया। 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए देशभर से चुने गए 24 कैडेट्स का ये दल पीर पंजाल रेंज जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करते हैं। 25 मई को मनाली में हुए कठिन ट्रायल के बाद 12 सीनियर डिवीजन और 12 सीनियर विंग मिलाकर कुल 24 कैडेट्स चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट सील्ड सड़क पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का 2 जून को विरोध जताया। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन, उसके बाद सचिवालय का घेराव कर चक्का जाम किया और फैसले को वापिस लेने की मांग की। 3 घंटे तक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ वकीलों की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी, जिसके बाद सड़क यातायात के लिए बहाल हुई। नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया, जिसको राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित किया। शिमला में 6 से 10 जून तक 71वीं राष्ट्रीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में 12 से ज्यादा राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देशभर से कलाकार, नर्तक, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच समूहों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उभरते कलाकारों को राष्ट्रीय मंच देना है। शिमला जिला के पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 6 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद शिमला के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में आयोजित किया गया। जिला की 13 पंचायत समितियों में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को शपथ के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों की निगरानी में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का 8 जून से आगाज हुआ, जो 12 जून तक चला। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया।

जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव एडवेंचर और रोमांच से भरपूर रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने दो दिवसीय प्रवास के तहत 9 जून को शिमला स्थित होटल पीटरहॉफ पहुंचा। प्रवास के प्रथम दिन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक में निगम में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। 9 जून को हिमाचल कांग्रेस में अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। शिमला के राजीव भवन में हुई अनुशासन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल दर्ज होने पर शिमला के राम मंदिर में 10 जून को विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाचन से भाजपा विधायक व उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना की। विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो देशवासियों के स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभु दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहाँ झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुड़ू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं।

0: मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
1: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
0: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
1: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
2: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
0: लुक छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
3: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
0: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
3: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
0: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से। और अब इस सांझ ठेले तक?
3: जी मैं घर जा रही हूँ।
1: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
3: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
0: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
3: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ हाँ, जाओगी
3: जी?
0: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
3: जी हाँ।
0: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
3: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
0: उसे जानती भी हो?
3: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
1: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
3: अच्छा तो अब मैं चलूं?
0: हाँ जाओ जाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मोलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
0: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
1: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना।
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है, हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी,
0: मासी। जीनी?
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से है। वो परीक्षा नज़दीक आ पहुँची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। You are now a poet, and in time you will be a great poet, Bench.
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप-छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
2: हाँ?
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
2: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो, तो फिर किस लिए आई हो?
2: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ? क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं।
2: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं, तो समझूंगा कैसे?
2: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती हैं। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
2: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
2: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
2: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
2: सरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद

0: रही हैं।
1: अब अच्छा तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: अब हाँ मौसी हो गई।
2: अरे थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: चरित्र।
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन, मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है,
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। काले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता? हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चुडू।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंज, अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू, पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने, वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है, और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन कौन हो सकता है?
4: कौन है? कौन कौन है?
3: अरे ये तो जोन्सबर्ग के एक नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है, क्या हुआ?
4: ओह, इतना खून
3: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने
4: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
3: बांधो बांधो। देखो, जैसे भी हो रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए, पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूं आता हूं आता हूं।
7: क्या है ये सब? तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
6: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
8: जी, जेम्स पिस्से।
9: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
6: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा।

0: क्या मिल गया?
1: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
0: यू आर राइट
1: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
0: तो मिस्टर जोसेफ पिस्टे।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 3:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की भुगतान का विशेष सजीव प्रसारण।

0: की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि

0: इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and Gram Panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country developed. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVK's ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district, Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
0: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ख़ास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल की विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is the

0: direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get अ डेवलप्ड भारत, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू गेट अ विकसित भारत।
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered. You are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer. You can check your bank account. You can be a part of the Digital India Mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support. They did not have the support of the raw materials. They did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं, 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvindu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has

0: delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
1: जी हाँ प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों,

विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में

की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खा
की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की

0: सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त की भुगतान का विशेष सजीव प्रसारण। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:37 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

नमस्कार युवा साथियों, कहिए कैसे हैं आप। हम तो ईश्वर से हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी युवा साथी एकदम तंदुरुस्त हों और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों। और भई देखिए, अगर आपकी सेहत दुरुस्त है तो फिर आपके सपने जो हैं वो भी साकार ही होंगे ना। तो देखिए, जब हम कठिन दौरों से गुजरते हैं, यानी कि जब कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो पर वो हो जाता है, कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन रिज़ल्ट कुछ ठीक नहीं आया, या कभी लगता है कि हमारे लिए ना मंजिल बनी ही नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी कि बस हम यूं ही चले जा रहे हैं, ना कोई दिशा है, ना कोई राह है। ऐसा होता है ना जी भाई, इसी को ही तो नकारात्मकता कहते हैं। और देखिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कभी निराश ना हुआ हो, जीवन में जिसे कभी हार का सामना ना करना पड़ा हो, या वो कभी हारा ही ना हो। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है। तो देखिए, सकारात्मकता हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हर सुबह के बाद दिन खिलता है, फिर धीरे धीरे शाम, शाम ढलती है और रात हो जाती है ना। लेकिन एक आस हमें होती है कि सुबह की एक नई किरण आएगी, एक नया सवेरा लाएगी और हम फिर उठेंगे और अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। यानी कि जो सपना हमने देख रखा है, हम उसे पूरा करने में लग जाएंगे। कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों खास आपके लिए, तो गौर फरमाइएगा। अंधियारे चाहे कितने भी हों राहों में, उम्मीद की किरण छुपी है निगाहों में। हर गिरना सिखाता है फिर उठना हमें, हर मुश्किल बनाती है मजबूत हमें। छोटे छोटे कदमों से मंजिल मिला करती है, मेहनत की मिट्टी से सफलता खिला करती है। जो सपनों को अपने विश्वास से सजाते हैं, वही इतिहास के पन्नों में नाम बनाते हैं, इतिहास के पन्नों में नाम बनाते हैं। ना हार से डरना, ना बाधाओं से घबराना, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाना, क्योंकि तूफानों से ही हौसले बना कर

हैं, पत्थरों से ही रास्ते बना करते हैं। दोस्तों, अपने मन में आशा का दीप जलाए रखना, हर पल खुद पर विश्वास बनाए रखना, कल की चिंता में आज ना खो जाना, हर नए अवसर को गले लगाना, हर नए अवसर को गले लगाना। दोस्तों, जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसे मुस्कान से सजाना, सकारात्मक सोच के पंखों से आकाश छू जाना, क्योंकि जीत उसी की होती है संसार में जो विश्वास रखता है अपने प्रयास में। तो भाई, ये थी आज की चुनिंदा पंक्तियां जो खास हम आपके लिए लेकर आए थे। चलते रहिए, बढ़ते रहिए और हर पल खुद को गढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता, शायद आईना भी नहीं। कई बार तो हमें लगता है कि अरे वाह, आईना तो सब कुछ दिखाता है जो मैं हूँ, लेकिन जो हमारा आईना दिल के अंदर है ना, वो सब कुछ जानता है। कहाँ पर मेरी कमियाँ हैं, कहाँ पर मेरी खासियत है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मुझे दुनिया से अलग करती है, अलग बनाती है। तो भाई, यही खासियतें आपको पहचाननी है। ईश्वर ने कोई ना कोई हुनर आपको ज़रूर बख्शा है, बिल्कुल। ऐसा हमारा कोई दोस्त नहीं है जो किसी ना किसी क्षेत्र में खास नहीं है। बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। मंजिलें और भी हैं, रास्ते और भी हैं। दोस्तों, एक हार मिल जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ करती है ना, तो क्यों ये नकारात्मकता हमें घेर लेती है? अरे भाई, आइए इसका सामना करें, इसको भी हम मुंह तोड़ जवाब दें, हम भी अपने अंदर से एक नई किरण जलाएं, नई किरण जगाएं और हम भी अपने जीवन को जगमगाता हुआ बनाएं, क्योंकि जीवन जिंदगी में एक ही बार मिलता है। और बात है मंजिलों की, तो भाई मंजिलें कई मिलती हैं, कोई बात नहीं, एक बार हार मिल गई तो क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं और जिंदा दिली के साथ चलते हैं, क्योंकि चलना ही राहे मंजिल है। तो ये थी चुनिंदा पंक्तियाँ दोस्तों आपके लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी और पंक्तियों में जो सकारात्मकता थी वो आप तक ज़रूर ज़रूर पहुँची होगी। छोटी छोटी हारों से क्या हारना, जिंदगी जब तक है ना, तब तक तो बस भाई हम जिंदा हैं, यानी कि कुछ तो है हमारे साथ, हमारे पास। जी हाँ, और ये हम खुद कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं, जो भी हैं आप, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के शहजादे हैं या राजकुमारी है ना, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अपने अंदर का जो एक इंसान है, जो एक सकारात्मक इंसान है, उसको हमेशा ज़िंदा रखिए, मुस्कुराइए, औरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। कहते हैं कि जब एक खूबसूरत सी मुस्कान आपके चेहरे पर आती है तो वो सामने वाले को भी मुस्कुराने के लिए विवश कर देती है। तो भाई, दिल खोल के हंसिए जब भी मौका मिले, और हर पल जीना है कैसे, जिंदा दिली के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
4: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
4: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
3: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
4: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी युवा दोस्तों, एक प्यारे से गीत के बाद और इन ज़रूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है युव मंच। अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन खास की। आज है 20 जून का दिन और आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस। दोस्तों ये दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लाखों लोगों के साहस, शक्ति और लचीलेपन का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर सन 2000 में इस दिन को मनाने का फैसला लिया था और तब से हर साल 20 जून को इसे मनाया जाता है। साल 2026 की थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ। जी हाँ, तब तक जब तक हरेक जो इंसान है वो सेफ नहीं है। जी दोस्तों, हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो हमने बात की, ये उन लाखों लोगों को समर्पित है जिनके साहस, संघर्ष और हिम्मत ने हमें भी एक नई सीख दी। हम आज के दिन उनका सम्मान करना सीखते हैं जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य गंभीर परिस्थितियों के कारण अपना घर और देश छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 से इस दिन को मनाने का सामूहिक रूप से फैसला लिया। और देखिए, जिस ये जो थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ, इसका मतलब है कि जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तब तक दुनिया की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज दुनिया में 11 करोड़ और 7 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में कई लोग इसे लेकर कई तरह के सवाल सर्च करते हैं। देखिए, क्या इन्हीं की जिम्मेदारी है कहीं पर सेटल होना? जी नहीं, ये हमारी आपकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको भी एक शरण मिले और ये भी एक अच्छा सा जीवन व्यतीत करें। अगर आपको थोड़ी और जानकारी दें तो आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी ईरान में, तुर्की में, कोलंबिया में, जर्मनी और पाकिस्तान में रहते हैं। इन देशों में अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और अन्य देशों से आए लाखों लोग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में ये लोग जो हैं ये रिफ्यूजी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सूडान, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सीरिया, म्यांमार और कांगो जैसे देशों के लाखों परिवार शामिल हैं जो युद्ध और हिंसा के कारण अपना घर छोड़ चुके हैं। तो हमारी और आपकी सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हर इंसान खुश रहे और एक खुशहाल जीवन जिए। और ये खुशहाल जीवन कब मिल सकता है? जब उनको एक अच्छी शरण मिले, यानी कि उनको रहने का एक सुरक्षित और एक स्थायी निवास उन्हें मिले और उन्हें वो हर कोई चीज़ मिले जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो ये था आज का दिन खास। इसी के साथ लीजिए, सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम का समय यहीं पर पूरा हो रहा है। मेहनत करते रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अपनी दोस्त पूजा शर्मा को अनुमति। नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल

0: हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिमी बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाने पर बल दिया।
1: मेरा ये मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
0: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
2: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिरमौर जिला में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां 638 परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे। नाहन में नियुक्त परीक्षा पर्यवेक्षक मोहम्मद रिजवान ने ये जानकारी दी।
3: हाँ, तो इस बार एनटीए ने हमारा री एग्जाम के लिए हम लोग जा रहे हैं और टोटल हमारे पास नाहन में 638 कैंडिडेट्स हैं और 3 सेंटर हैं टोटल। जो भी हमारे यहाँ सीसीटीवीज हैं और जैमर्स हैं और गाइडलाइन जो एनटीए की तरफ से आई है वो हमने अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.3।

98 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सफर सुहाने गाने नए पुराने। सफर सुहाने गाने नए पुराने सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए भाई दोस्तों, आपकी शाम को और भी सुहाना बनाते हैं कुछ चुनिंदा नगमे, नए तो कुछ पुराने सुनवाते हैं।

दोस्तों, श्रेया घोषाल और सोनू निगम के युगल स्वरों में आपने ये प्यारा सा गीत सुना जिसे हमने लिया था लगे रहो मुन्ना भाई से। तो भई आपसे अब मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से सफर सुहाने गाने नए पुराने में। तो लीजिए, अब ये है अगला गीत जो हमने लिया है किनारा फिल्म से। मिली जुली आवाजें इस गीत में है लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
5: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

0: दोस्तों, लोफर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सफर सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले आंदे सारे ही किसान, बागवान, पशुपालक भाई बहनों, जो रोशनी कने मेरे सहयोगी
7: लाजूदा प्यार परिया, नमस्कार, राम राम।
6: उम्मीद कर दे कि अहां दे सारे ही किसान, बागवान, भाई भैन जे से ठीक ठाक होने कि अपने अपने कम्मा कारां दे विच तां पैसे व्यस्त रहंदे ही हन।
7: जी बिल्कुल, अहां किसानां दा यही तां कमकार है कि जिहड़ा जी अहां दी खेतीबाड़ी दा कमकार चले आ, क्यारियां न्यारियां दा काम चले आ ना, से अहां करदे कमांदे रहन, अपने माला पशुआं दा असां खरे करने ख्याल रखन। पर दिखा रोशनी बोबो, गल यही ख्याल कने कमकार अहां तां ही करना जे पहले अहां दी सेहत खरी होंगी।
6: ये गल भाई 16 आने सच गलाई है। जे अपना स्वास्थ्य ठीक है, अपनी सेहत ठीक ही ना, ताई और काम जैसे खरे लगते हैं ना।
7: जी बिल्कुल रोशनी बोबो, तहां अपने सारे ही किसान कने बागवान भाई भैन जो ये बोलना चाहते कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखना।
6: कने भाई एक गल और भी, कार्यक्रम है ना किसान वाणी, तो इस अहें ढेर सारियां गल्लां बातां जे से अपने सारे सुनने वाले सौगी करते हैं, कने सह गल्लां बातां हुंदियां खेतीबाड़ी ने संबंधित, अहारे माल पशु ने संबंधित, ये सरकारी योजना ने संबंधित। तो आज भी अहां अपने सारे सुनने वाले जो ढेरों जानकारियां जे से इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी है ना।
7: जी बिल्कुल, कने अहां कोई कमकार भी करते तो सबसे पहले जी असे बाहर निकली ने अंबरा बखी दिखी लैंदे।
6: तुम्हारा इशारा मैं समझी गई, तुहें गल करा दे मौसम दी।
7: मौसम दी जानकारियां बाद जी भाई अहां भी कोई कमकार शुरू करी दे ना, तो तिस च फिर ढक कुआड़ कने नठ भज जी से लगी रहंदी। तो अज के तापमान दी गल करन, ता ज्यादा ते ज्यादा रिया 35 डिग्री सेल्सियस, कने घट ते घट रिया 25 डिग्री सेल्सियस।
6: पई दिखा हां ते ग्रां दे विच कई किसान भाई भैन ते एड़े भी हैं ना लाजो, पई सै इस टाइम जे आ सै खेतरां ते औदे होणे है ना
7: जी,
6: क्योंकि संस का बेला हुंदा ता भ्यागा संजा जे सै काम ठीक हो जांदा ही है या कने दिने ता भाई धुप्पा भी रह दई है या बिचे बिचे चलो टकवाड़ भी लगी रही, बरखा भी कई जगह हो जाती है क्योंकि ये तो मौसम आ, कने मौसम बदलता रहता ही है, काली बरखा हो दी, काली धुप्पा हो दा, पर इसी टकवाड़ जी असं अपने काम निपटाई लेने हैं ना। नंदाइए तुम्बाइया रहो, लोडा ने अम्मा दा हो या फिर कोई होर काम हो।
7: कने रोशनी बोबो, गल यही कि कोई भी अहम जो जानकारी भी सीखने मिला दी या दूसरे मिला दी, तो तिथी भी जाए करने जी आस है सुनी लैनी, कने दिखी सुनी ने है कमकार जी असें अपनाई भी लेना।
6: तो तू अपनी गल्ला च रोक ना एक मिनट, कने ये सुन दिख भला क्या गला दे हैं।
8: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
9: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
8: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
7: ले भई रोशनी बोबो, दिख केड़े पते दी गल जी ऐसे सुनने मिली है भाई, एक किस्त जी ऐसे आज जारी भी होगी, कने आहां जो मिली भी गई भाई, तिजो भी मुबारक, कने मिंजो भी मुबारक।
6: सौगी सौगी अहारे सारे किसान, बागवान भाई भैणा जो भी मुबारक सहजे यह किसान सम्मान निधि योजना दा लाभ ले दे हैं
7: जी
6: भाई, बड़ी भरी मदद जी से आहां जो इना चीजा ते मिलदी आई।
7: हां कने रोशनी बोबो, इहा योजना दा इना चीजा दा यही उद्देश्य रहंदा सरकार दा कि आहां किसान ना दा जी ऐसे विकास होए, आए अहां दी जी ऐसे

0: कने अहाँ एक जी सफल किसान बन।
1: कने अहारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं भी जे दिखा इन्हें गल्लां पर जे ऐसे खास जोर दिते आया भी किसान जो जे ऐसे आर्थिक सुरक्षा मिलने चाहिए, कने डिजिटल पारदर्शिता, कने तकनीक जे ऐसे अहाँ जो इस्तेमाल करने चाहिए, सौगी सौगी कृषि दे बीच जे ऐसे आधुनिकीकरण जे ऐसे अहाँ जो अपनाने चाहिए। हाँ, किसान कल्याण नीतियां जी से बनाई जाती हैं, कने खास करी ने नारी सशक्तिकरण पर जे ऐसे जोर दिते जाता।
0: इन सारी सुविधाएं दा अहाँ लाभ लेना ही है, कने सौगी सरकार जेड़ा जी अहाँ जो फायदा दे दी ना तिस जो व्यर्थ नहीं गुआना,
1: क्योंकि तिये जे एक किसान सम्मान निधि योजना है ना, तिये सरकार अहारे वास्ते जे से होर बड़िया सारिया योजना लेने आंदी हैं जिन्हें जो अहें कृषि कल्याण योजना के नाम ते जाने सकते हैं। कृषि कल्याण योजना दे बीच जे आ से ढेर सारिया जे ऐसे योजना रहंदी हैं।
0: बिल्कुल ठीक गला दे भाई तू, हाँ दिखा रोशनी बोबो भाई, कृषि कल्याण योजना जी से अहां भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने जो तिना दे आधुनिक तकनीकों जो सिखाने ताई या फिर कृषि च सुविधाओं का लाभ लेने दे ताई जी ऐसे अहां जो दित्ती जाती है मुहैया कराई जाती है। कने इसका उद्देश्य यही है कि जेडे जी अहां दे ग्रां है तिथी जी ऐसे कृषि तकनीकों का कने सुविधाओं का जी ऐसे विकास होए।
1: कने यहां योजना च क्या होंदा ही है भी किसान जो कई लाभ जो ऐसे दिते जाते, कई तरह की सहायता तिना जो जी ऐसे प्रदान की जाती। तो देखो भाई इस सारे ते पहला काम आंदा सॉइल हेल्थ कार्ड का, सारे किसान जो मिट्टी सेहत जांचने वास्ते जी ऐसे कार्ड वितरित किए जाते ही है। कने अगर मिट्टी स्वस्थ हो ना ता ही उत्पादन जैसे सही हो पाता। दूजी गल पशु टीकाकरण की, मवेशियों च खुरपका मूहपका या भेडा बकरियों च जी ऐसे PPR जी बीमारियां ही से बड़िया ज्यादा होंगे, तो तिना बीमारियों का 100% टीकाकरण जी आ से कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत जी ऐसे किया जाता ही है।
0: बिल्कुल, कने सौगी जेडे जी अहां दे बागवान है तिना जो बीज और पौधे दी जी ऐसे जानकारी दित्ती जांदी है।
1: सौगी सौगी सिंचाई ने जुड़ी दी भी कई योजना जी से अहारे वास्ते सरकार लेई नहीं आंदी, ताकि खेती बाड़ी च जो किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए, कने टाइम पर जी ऐसे सिंचाई करी सकन।
0: कने सौगी सौगी रोशनी बोबो दिख जेडे जी कृत्रिम गर्भाधान हुंदे से भी कराए जांदे, ताकि जेडे जी अहां दे पशुआं दी नस्लां ही तिना च सुधार करी ने जी तिना जो विशेष सुविधा दिती जाए।
1: ठीक गल गला दे है। तो देखो भी जो कृषि कल्याण योजना है ना, ये हमारे कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय जे चलांदे आए। इसरे अलावा भी भाई दिखा और बड़िया सारिया योजना जी ऐसे चली दियां रहंदियां हैं, तो अहां जो जी ऐसे इन्हां योजना का लाभ जी ऐसे जरूर लेने चाहिंदा ही है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जितने भी रोशनी बोबो योजनाएं चलाई दी तिना दा यही उद्देश्य है कि अहां दे जड़े जी छोटे कने सीमांत किसान है तिना जो जी ऐसे आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए।
1: बिल्कुल, तिना खेती बाड़ी का कम कार जैसे ठीक चलो, आर्थिक किसी तरह की तिना जो तंगी नहीं आए, आर्थिक मदद मिलती रहे, कैसे अपने कम जो जैसे और ज्यादा उपर जैसे लेने चलन, यही इन सारिया कृषि कल्याण योजना का जी ऐसे उद्देश्य है, कने यही इन लाभ है।
0: बिल्कुल, कने ज्यादा जानकारी दे ताई भाई आहे अपने निकट जेडे जहां दे कृषि विभाग होंगे या कृषि विज्ञान केंद्र है तिना ने संपर्क करी ने जी ऐसे पूरा लाभ ले सकते हैं।
1: कने इत्थी भाई अहां सारे मिली ने लाभ लेना एक मिठड़े जे
0: लोक गीता दा।

0: भंडारण के ताई जी आस है बीजा जो जी आस है अहां जो अच्छी तरह ने हवादार कमरे च ढेर लगाई करने जी आस रखना चाहिदा करने फिर तिस जो हल्दिया दे पत्ते करने जी आस है टक्की करने संग्रहित करी लेना चाहिदा ही है।
1: लिया जी ता ए तो सारी गल बात हुई पे किस तरीके ने अहें हल्दी री विज्ञानिक खेती करी सकते हैं बेहतर उत्पादन वास्ते कने अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो हां जो भाई ज्यादा मुनाफा भी मिलना ही है
0: जी।
1: ते हुन सुनी लैंदे मिठड़ा जिया
0: लोक गीत।

0: रुपये, बंद गोभी जेड़ी है सह रही 25 रुपये, शिमला मिर्च है सह रही 45 ते 50 रुपये।
1: घीए की गल करिए तां घीआ प्रति किलो रे आ 25 रुपये, लौकी 30 ते 40 रुपये, भिंडी 30 ते 35 रुपये, टिंडे राज का भाव आ 25 ते 30 रुपये, करेला 30 ते 35 रुपये, पालक 45 ते 50 रुपये प्रति किलो, धनिया 120 ते 160 रुपये, टमाटर 36 ते 40 रुपये प्रति किलो, राम तोरी राज का भाव रहा 35 ते 40 रुपये, गाजर 40 ते 45 रुपये, हरी मिर्च भी 40 ते 45 रुपये प्रति किलो।
0: कन्नै जेहड़ा नींबू है सह प्रति किलो दे हिसाबे रही आ 55 ते 60 रुपये, खीरा रही आ 20 ते 25 रुपये, बैंगन 30 ते 35 रुपये। अदरक दी गल करन तां अदरक रिया 180 रुपये, लहसुन रिया 150 ते 160 रुपये, मटर प्रति किलो दे हिसाबे रहे 80 ते 85 रुपये, फ्रांस बीन रही 100 ते 120 रुपये, कद्दू रिया 20 रुपये। कन्नै जेहड़ा जी अरबी है 30 दा भाव रहा प्रति किलो दे हिसाबे 35 ते 36 रुपये।
1: हुण गल कर लैंदे हैं फलां दी। फलां दे विच केला प्रति डब्बा 12 किलो दा रहा 520 ते 600 रुपये, सेब प्रति किलो 160 ते 170 रुपये, अनार 150 ते 190 रुपये, मसमिया राज का भाव रहा 110 ते 120 रुपये, पपीता 50 रुपये प्रति किलो, कीवी प्रति डब्बा 1100 ते 1200 रुपये, अनानास 50 ते 55 रुपये, अमरूद 120 रुपये प्रति किलो, माल्टा 160 180 रुपये, तरबूज 16 ते 18 रुपये।
0: जी कने खरबूजा जेड़ा है सैरिया प्रति किलो दे हिसाबे 20 ते 45 रुपये, आम सफेदा प्रति किलो दे हिसाबे रिया 75 ते 80 रुपये, आम तोता रिया 50 रुपये, आम दशहरी जेड़ा है सैरिया 55 रुपये, पलम रहे भाई 120 ते 130 रुपये। कने जेड़े जी लीची है सैरे 140 ते 170 रुपये, चेरी जेड़ी है सैरे प्रति किलो दे हिसाबे 350 ते 360 रुपये।
1: ले जी ए तां गलबात होई फलां सब्जियां रे थोक भाव दी। इन्हां सारियां जानकारियां सौगी अज दे किसान वाणी कार्यक्रम दा टाइम जी असै भी इत्थी खत्म होआ दा।
0: जी त रोशनी बोबो सारे सुनने आले ते लैंदे अनुमति कने बोलदे नमस्कार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है, इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: तो फला बोल रहा
2: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सब ये डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप पे बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: कार्यक्रम किसान वाणी दे प्रायोजक के
0: कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां

0: निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देश गान।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन 4 जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं, जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
2: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी।
2: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में। मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है, जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
2: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि

0: आप तुरंत फोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है,
1: जी
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल।
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने, और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65,000-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स

0: वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं। अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसे। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जल खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार है उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से, 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ है ये भी आप

0: आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खास तौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
1: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए। उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
0: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
1: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
0: जी।
1: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
0: हो जाता है।
1: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी। पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
0: जी।
1: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
0: हाँ।
1: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
0: बहुत बड़ा,
1: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
0: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
1: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
0: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मोर्टैलिटी रेट है,
1: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
0: जी,
1: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
0: जी, जी।
1: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
1: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
0: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
1: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
0: जी,
1: टिक्की वाला,
0: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
0: एक अवेयरनेस क्रिएट,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
0: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
0: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल को कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले देखोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
0: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
1: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
0: जी,
1: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद, 100 हो गई।
0: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
1: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट यूजी पुनः परीक्षा कल। देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।
5: मेरा यह मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए। सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही है, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
4: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर, मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। इसमें 2,79,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

0: बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नीट परीक्षा का बार बार लीक होना देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसकी गहन व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट देने वाले छात्रों के लिए HRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।
1: नीट का पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चे हमारे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं पेपर देने के बाद एक एग्जामिनेशन पास करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही लीक हो रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकारें थे कभी भी इस प्रकार के कोई पेपर लीक नहीं हुए। ये कहीं ना कोई बड़ी गलती है। हमने नीट के हिमाचल के बच्चे हैं, हमने ये कहा कि बार बार किराया क्यों खर्च करें, हिमाचल के बच्चों को आने जाने का पूरा फ्री में उनको सुविधा उपलब्ध करवाएं।
0: इस परीक्षा के लिए कांगड़ा जिला में स्थापित 12 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार ITBP की सेवाएं भी ली जाएंगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
2: कल नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है पर की पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर लिया और जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहां पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी व्यक्ति से ना आए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाली राज्य सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं पर ईंधन व बिजली खरीद समायोजन अधिभार के रूप में प्रति यूनिट 33 पैसे बढ़ाकर हर उपभोक्ता पर औसतन लगभग ₹125 का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रदेश में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। यह विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और इसमें हजारों लोग योगासन करेंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
3: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को कर्ज और निजीकरण की राह पर धकेला है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने नियमित खर्चों के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार संस्थानों को मजबूत करने के बजाय निजी हाथों में देने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर RDG बंद करवाकर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी के प्रदेश

0: प्रबंध नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
3: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
9: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
10: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
11: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
8: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
12: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
13: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज से भेंट वार्ता।
14: और मैं जितेंद्र,
15: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। सरकार द्वारा बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ देश और प्रदेश के हर आयु वर्ग के व्यक्ति ले रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री राजीव भारद्वाज। महोदय, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
16: बहुत बहुत धन्यवाद।
15: बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, केंद्र सरकार के 12 वर्षों को यदि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण आप किन योजनाओं को मानते हैं?
16: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आकाशवाणी में मुझे अपने विचार रखने का सौभाग्य आपने प्रदान किया। मोदी जी का 12 वर्ष का शासनकाल

एक पंचायत में दो तीन बहुत अधिक कोशिश कर लेंगे तो चार घर आते थे। आज आप आंकड़ा उठाकर देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश का पंचायतों का, एक एक पंचायत में 150-150, 200 हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके पास पक्की छत है। केवल छत नहीं है, बढ़िया घर है, साथ में इज्जत घर भी है। और उसके बाद दूसरी योजना

0: कि ये जो 12 वर्ष का सुशासन का जो काल है, मैं तो इसको इस देश का अमृत काल मानता हूँ, स्वर्णिम काल मानता हूँ। और मोदी जी की कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना की विकास की धारा गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है। और उसके लिए दूसरी योजना मैं जो गिनाना चाहता हूँ, वो भी प्रदेश की मातृशक्ति के लिए, उज्ज्वला योजना। हिमाचल प्रदेश में चूल्हे में रोटी बनाई जाती थी, और मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि चूल्हे में जो लकड़ी का जो धुआं है, उससे आंख, फेफड़े डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। और एवरेज घर की जो गृहिणी है, दिन के 12 घंटे में 8 घंटे उस धुएं के सामने,
1: जी
0: उसके बाद दोपहर को आके शाम की चाय बनानी है, उसके बाद रात की रोटी बनानी है, तो एवरेज 8 घंटे गृहिणी लकड़ी के धुएं के सामने बैठती थी, और उससे आंख की बीमारी और फेफड़ों की
1: फिफ्टी
0: बीमारी। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, ये जो सर्वे हुआ था, देश की और हिमाचल प्रदेश की 70% जो महिलाएं हैं वो आंख की बीमारी से और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थी। मोदी जी ने विचार किया, उज्ज्वला योजना लेकर आए, हर घर में गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर। उसके बाद जो सर्वे हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50% इन दो बीमारियों में कमी आई है, उसका यदि सीधा सीधा श्रेय किसी को जाता है, नरेंद्र भाई मोदी को।
2: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक खाना पकाने के लिए लकड़ी, घास फूस और अन्य पारंपरिक ईंधनों का उपयोग किया जाता रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और वनों पर भी दबाव बढ़ता था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। उज्ज्वला योजना ने हिमाचल प्रदेश में धुआं मुक्त रसोई, महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण, समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश भर की करोड़ों गृहिणियां उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सी महिलाएं उज्ज्वला योजना द्वारा लाभान्वित हैं। आइए सुने उज्ज्वला योजना द्वारा लाभान्वित महिलाओं के विचार।
3: मेरा नाम सीमा देवी है, मैं जिला किन्नौर कल्पा गांव की रहने वाली हूं। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला। खाना बनाने के लिए लकड़ी और पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ता था, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब गैस कनेक्शन मिलने से रसोई का काम आसान हो गया है और धुएं से भी राहत मिली है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
4: मैं नीलम कुमारी गांव दंगड़ी जिला हमीरपुर की रहने वाली हूँ। जब से मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिला है, मुझे काफी फायदा हुआ। जैसे पहले जंगल से लकड़ी मिला के खाना बनाना पड़ता था, उससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अपने परिवार को भी टाइम दे पाते थे। और जब से उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन मिला, तब से अपने परिवार को भी टाइम दे पाते हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
5: नाम अंशु वाला है, मैं कुल्लू शहर के सरवरी में रहती हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत मुझे मोदी जी ने गैस दी थी, जिसका उपयोग मैं अभी भी कर रही हूँ। कोरोना टाइम में हमें ये गैस मिली, जिसका उपयोग हम अभी तक कर रहे हैं। हम इसके लिए मोदी जी और केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं।
6: सर, जल जीवन मिशन और पीएम किसान जैसी योजनाओं ने हिमाचल के ग्रामीण परिवारों को जीवन किस तरह बदला है?
0: जीवन नहीं बदला, कायाकल्प कर दिया है
6: जी।
0: किसान सम्मान निधि, हर किसान को, जो एलिजिबल किसान है, जिसको इसकी जरूरत है, 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। और मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि, ये किसान का सम्मान किया है। देश के प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के किसानों को ये संदेश दिया है कि किसी भी विपदा की घड़ी में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, हम लोग तो वर्षा पर निर्भर है, सिंचाई कितने साधन नहीं है, पहाड़ी प्रदेश है, हम वर्षा के ऊपर निर्भर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के किसान को कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ खड़ा है
6: जी सर।
0: यदि कोई विपत्ति आती है तो आप उस निधि से बीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक सम्मान है किसान का, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक कृषि एवं बागवानी प्रधान राज्य है जहां अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आय को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे

0: उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। हिमाचल प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह योजना उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है। इससे किसानों को कृषि निवेश, बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कृषि विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है और हिमाचल प्रदेश के किसान भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। आइए सुने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा लाभान्वित किसान भाइयों के विचार।
1: मेरा नाम पवन कुमार है, मैं चंबा जिला के रहने वाला हूँ। मोदी जी ने 2000 रुपए हमारे खाते में डाला हुआ है, वो उससे हमने बीज लिए हैं, खेतों में बोया है, खेतों में काम कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद मोदी जी का।
2: मेरा नाम रंगीला है, जिसे चंबा रहने वाला हूँ। जो खेती बाड़ी का 2000 रुपए मोदी ने पाया तो मेरे खाते में पड़ी है, मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
3: मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के तहत अर्की उपमंडल के एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं और कृषि ही हमारे परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। पिछले 5.5 सालों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की राशि नियमित रूप से मेरे खाते में पहुंच रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये राशि हमारे कृषि कार्यों जैसे खेतीबाड़ी के जो उपकरण है, इसके अलावा खाद है, बीज है, उसको लेने में मददगार साबित हो रही है।
4: मेरा नाम हरीश कुमार, मैं मांगू गांव का रहने वाला हूं। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है। यह राशि समय समय पर सीधे मेरे खाते में आती है, जिससे खेतीबाड़ी के कार्यों में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ।
5: मेरा नाम श्यामलाल है, गांव बातल से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है। मुझे पिछले 6 वर्षों से इस योजना का लाभ मिल रहा है और इससे खेती के लिए बीज, खाद व अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
6: अगर हम बात करते हैं सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्गों, सुरंगों और कनेक्टिविटी में काफी निवेश हुआ है, इससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई दिशा मिली है क्या?
7: डेफिनेटली, निसंदेह। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटा सा हिमाचल प्रदेश है। मैंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने हिमाचल प्रदेश का एक एक कोना अपने पांव से नापा है। हिमाचल प्रदेश की दुश्वारियां क्या है, हिमाचल प्रदेश को क्या जरूरत है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और उनमें से उनको लगा कि सड़कों का काम होना चाहिए, क्योंकि जब जब हमारी सरकारें आई है, चाहे जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी, श्रद्धेय शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने सड़कों का काम शुरू किया था। उस समय उन्होंने अपने प्रदेश की बहनों के सिर से घड़ा उठाया था, आज उनको पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल छोटा सा प्रदेश, 3-3 4 लेन का काम चल रहा है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोई अंदाजा लगा सकता था? टनल्स बन रही हैं, और उससे आप एक अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो मैं अगर अपने ही लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र, कांगड़ा और जिला चंबा, दो जिले मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं
6: जी।
7: और पर्यटन की दृष्टि से इतना खूबसूरत लोकसभा क्षेत्र कहीं है भी नहीं, लेकिन क्या जरूरत है? कनेक्टिविटी की जरूरत है
6: जी।
7: क्या जरूरत है? हवाई सेवाओं की जरूरत है। क्या जरूरत है? रेल की जरूरत है। और उस दिशा में जोर से काम हो रहे हैं। अब आप पठानकोट मंडी 4 लेन का काम करीब करीब 80% पूरा हो चुका है, आने वाले एक वर्ष में बिल्कुल सुचारू हो जाएगा। लोकसभा में ट्रेन की ब्रॉडगेज करने की लड़ाई में लड़ रहा हूं बार बार, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं, क्योंकि जो स्टडीज हैं, जो मैंने भी अलग अलग जर्नल्स में पढ़ के, अलग अलग गूगल में सर्च करके देखा है, टूरिस्ट कहां जाता है? टूरिस्ट वहां जाता है जहां रेल जाती है। टूरिस्ट अपनी गाड़ी में जाना पसंद नहीं करता, टूरिस्ट बस में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि रेल में हर सुविधा होती है। आंख बंद करके अपने डेस्टिनेशन से बैठ जाओ, जहां आपने पहुंचना है आंख बंद करके आप पहुंच जाएंगे, और हर सुविधा ट्रेन के अंदर उपलब्ध होती है। इसके लिए कोशिश की जा रही है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसके बड़े सुखद परिणाम आने वाले समय में हमें मिलेंगे, ऐसे विश्वास दिला सकता हूं आपको। तो कनेक्टिविटी इस क्षेत्र की, हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटन है, मेरा तो ये मानना है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का भला यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकता है, वो केवल पर्यटन का क्षेत्र है और उसमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसमें बड़े जोर से काम चल रहा है।
0: जी जी, पर्यटन की आपने बात की है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से हिमाचल के शक्तिपीठों और अन्य तीर्थ स्थलों को क्या लाभ मिला है?
7: देखिए, हिमाचल देवभूमि है, शिव भूमि है और चार चार देवियां इस क्षेत्र में है। माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वालामुखी, माँ ब्रजेश्वरी, माँ चामुंडा, माँ बगलामुखी। अगर चंबा की तरफ आप चले जाए तो लक्ष्मी नारायण, भलई माता, और साथ में देखिए तो हिस होलीनेस दलाई लामा यहाँ हमारे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो इसके लिए एक कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम जैसे आप धार्मिक सर्किट बनाने की आवश्यकता है, अंब तक हमारी वंदे भारत आती है। अंब और माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला, कांगड़ा, ब्रजेश्वरी, चामुंडा और बगलामुखी और चंबा, इसके बीच में केवल एक पहाड़ है। उस पहाड़ को काटकर वंदे भारत इन देवियों के चरणों में भी आ सकती है। इससे क्या होगा, एक धार्मिक सर्किट बनेगा, चिंतपूर्णी से शुरू होकर चंबा, चंबा से वहां से एक टनल का प्रपोजल है, वहां से सीधे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से सीधे मनाली। तो एक सर्किट, कम से कम टूरिस्ट जो है 10 दिन तक मेरे लोकसभा क्षेत्र में रुक सकता है। तो इसलिए इसकी भी कोशिश की जा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का तो एक विजन है, मतलब हिमाचल प्रदेश को फल राज्य तो है, पर्यटन राज्य बनाने की दिशा की ओर भी अग्रसर है और उसको बड़ी जोरदार से लड़ाई लड़ी जा रही है।
0: जी, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण आज दूरस्थ गांवों तक डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं?
7: मैं तो ये कह सकता हूं कि ये एक अकल्पनीय कार्य है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और मैं कोट करना चाहता हूं, देश के एक वित्त मंत्री हुए हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग कम है, गरीबी अधिक है, तो किस तरह से डिजिटल इंडिया होगा, टैक्स से भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, भारतवर्ष डिजिटल इंडिया क्षेत्र में लीड कर रहा है। आज आप चले जाएं, यहां देख लीजिए, छोटे छोटे गांव में जाके देख लीजिए, धर्मशाला तो एक शहर है, आप छोटे छोटे गांव में जाके सर्वे कर लीजिए,
0: जी
7: ठेले वाला भी स्कैनर लेके बैठा है, आप स्कैन करिए, अपनी पेमेंट करिए। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये कायाकल्प है इस देश का, हिमाचल प्रदेश का, जहां पूर्ववर्ती सरकारें कहती थी ये संभव ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते, देश में तो किया, वर्ल्ड लीडर बन गए। AI समिट, क्या कभी इस देश में कल्पना की जा सकती थी कि विश्व का AI समिट दिल्ली भारत मंडपम में होगा, अभी हाल ही में हुआ है। विश्व में भारत की साख कहां पहुंच गई, डिजिटल इंडिया में इंडिया जो है वो डिजिटल क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, और AI जो आज की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी से आप देख रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे इस क्षेत्र में कितनी उन्नति होगी, और उसमें भी भारत लीड कर रहा है। पूरे विश्व के AI एक्सपर्ट्स का समिट दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने करवा दिया। तो ये आने वाले समय में बदलते भारत की तस्वीर है।
6: अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
7: ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस दृष्टि से लोन, सस्ता लोन देकर नौजवान खड़ा हो, वो जॉब सीकर ना हो, जॉब क्रिएटर बने, वो अपना स्टार्टअप शुरू करके 10 और लोगों को नौकरी दे ताकि 10 और परिवार उसके जिम्मे लगे, उनको पालने वाला बने, पालक बने, जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजनाएं, और उसमें मैं देखता हूं कि कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं अब तो। पूर्ववर्ती सरकारों में दशकों में उसकी वो थी 2 यूनिकॉर्न, 4 यूनिकॉर्न्स, आज हजारों में यूनिकॉर्न्स अगर बने हैं तो ये पिछले 12 वर्षों की मेहनत है नरेंद्र भाई मोदी जी की, हिमाचल प्रदेश में भी और विश्व में भी, देश में भी। तो ये योजना आने वाले समय में एक क्रांतिकारी कदम लेकर आएगी, और मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है देश के प्रधानमंत्री ने, उस लक्ष्य में ये जो जो योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं वो सीढ़ी का काम करेंगे, दैट विल बी स्टेप लैडर्स इन कमिंग टाइम्स।
6: जी, अगर हम बात करते हैं स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को नई पहचान मिली है, तो इसमें हिमाचल के बागवानी और स्थानीय उत्पादों को क्या नया अवसर मिला है?
7: देखिए, हमारा प्रदेश फल राज्य है और लोकल उत्पाद की जहां तक आपने बात की, अगर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, चंबा में जाइए आप, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल, चंबा की संस्कृति, और उसके ब्रांड एम्बेसडर देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसराइल में जब देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री को जो उपहार दिया था वो हिमाचल की टोपी थी और चंबा का थाल था और चंबा का रुमाल था
6: जी।
7: और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी एक बहन पद्मश्री चंबा के रुमाल के कारण है, हमारे एक भाई पद्मश्री विजय शर्मा जो हमारी कांगड़ा पेंटिंग है, चंबा की पेंटिंग है, उसके कारण पद्मश्री अवार्डी है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के उत्पादों को बढ़ाने के लिए मार्केट की आवश्यकता है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। जैसे मैं सांसद हूँ, मेरा बहुत अधिक थ्रस्ट इस बात पे होता है, हमारा हमने पीछे एक निर्णय किया है, जितने हमारे उत्पाद हैं, चाहे वो कांगड़ा में हमारे नौजवान कुछ कर रहे हैं या चंबा में कुछ कर रहे हैं, शहद है चंबा का, चंबा की जरीस है, चंबा की चुक है, ये वहां के लोकल उत्पाद है, उनको कैसे मार्केट दी जाए? कांगड़ा के उत्पाद है, हमारे जो चीड़ के जो चिला वो होते हैं उससे के कुछ बनता है, पीछे इसकी प्रदर्शनी लगी थी यहाँ वॉर मेमोरियल में, मैं तो देख के हैरान हो गया। तो उसके लिए मैंने एक निर्णय किया था, मैंने जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी जो कमेटी है उसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मैंने वहां आदेश किए थे कि हमारा जो एयरपोर्ट है वहां इनको बूथ उपलब्ध करवाया जाए, तो वह किया गया वहां, ताकि देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं वो हमारे उत्पादों को देखें, समझें, उनको खरीदें, एंड दे आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर्स। तो इसके लिए भी कोशिश की जा रही है।
0: माननीय सांसद महोदय, केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग, इन सभी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपको कौन सी योजनाएं सबसे अधिक परिवर्तनकारी लगती हैं और क्यों?
7: मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, इटली देश की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बराबर देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर गरीबों को दिए, पक्की छत दी है, और ये सफर जारी है, लंबे समय तक चलेगा।
0: हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां अनेक परिवार भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण सुरक्षित और पक्के आवास से वंचित रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के रूप में उभरी है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। हिमाचल प्रदेश में योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। हाल के वर्षों में राज्य के लिए बड़ी संख्या में नए आवासों को स्वीकृति मिली है, जिससे आवासहीन परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल आवास की समस्या का समाधान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छता और ग्रामीण एवं शहरी विकास को भी बढ़ावा देती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार जो बेघर थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे परिवारों को अपना घर मिल चुका है और आज उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए सुने प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा लाभान्वित कुछ परिवारों के विचार।
8: मेरा नाम शकुंतला कुमारी है, मेरे पति का नाम श्री विकास कुमार है। हमारे हम कच्चे मकान में रह रहे थे, कच्चे घर, कच्ची छत थी, बारिश में पानी अंदर आ जाता था, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती थी, बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आई है, तो वहाँ पर गए, उन्होंने हमारे माम को घर डालने के लिए पैसे दिए। हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, फिर हम उनसे उनके पैसे से घर बनाए, पक्के मकान बनाए थे, आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पक्के मकान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्कीम चलाई है वह गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो हमने इसका लाभ उठाया, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पक्के मकान दिए।
7: ये योजना है, ये मैं ये कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में, देश के प्रधानमंत्री तुष्टिकरण नहीं करते, सशक्तिकरण करते हैं। अपीसमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट है। महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी।

0: अब तो ड्रोन दीदी भी बनाई जा रही है क्योंकि ड्रोन का जमाना है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश की नारी शक्ति के लिए, देश के किसान के लिए, देश के गरीब के लिए। देखिए, जब कोरोना काल आया था सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरा विश्व तहस नहस हो गया, भारत खड़ा हो गया एक स्थान पर। आवागमन बंद, व्यापार बंद, काम धंधे बंद, सरकारी कार्यालय बंद, कोई कुछ काम नहीं हो रहा था। उस समय देखिए देश के प्रधानमंत्री को गरीब की चिंता थी। जो अमीर हैं वो तो खा सकते हैं, उनके पास इतना सरमाया होता है, लेकिन गरीब क्या करेगा जो सुबह दिहाड़ी लगाता है और शाम को रोटी खाता है। देश तो बंद हो चुका था। गरीब कल्याण प्रधानमंत्री, गरीब कल्याण अन्न योजना, 50 करोड़ गरीबों को घर में 10 किलो अनाज पहुंचाया देश के प्रधान, वो अभी तक भी चल रहा है। अब 80 करोड़ गरीब उसका लाभ ले रहे हैं। ये योजना, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये कोई राजनीतिक कदम नहीं था, ये उस गरीब की चिंता थी जिसको सुबह कमा के रात को रोटी खानी है। अगर काम धंधा नहीं होगा तो कहां से खाएगा, कैसे कैसे पेट पालेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों को आज भी प्रधानमंत्री इस योजना के तहत अन्न दे रहे हैं।
1: जी, भविष्य की बात करते हैं। विकसित भारत 2047, इस लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की क्या भूमिका होगी? प्रदेश किन क्षेत्रों में राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकता है?
0: मुझे लगता है कि जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस देश के 140 करोड़ जनता के दम पर दिया है। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है 1 लाख युवा आगे आए, निस्वार्थ हों, नेशन फर्स्ट की भावना से काम करने वाले हों। और केवल ये नहीं कि जो उनके जिस दल के वो प्रधानमंत्री उस दल के हों, हर जितने राजनीतिक दल हैं इस देश में, उन राजनीतिक दलों से युवा निकलें और आगे बढ़ें निस्वार्थ होकर, नेशन फर्स्ट की भावना लेकर, क्योंकि उनका मानना है देश को 2047 में यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, उस काम के जो ध्वज वाहक होंगे उस देश के युवा होंगे। और जितने मुद्रा योजना, मैंने कहा गरीब कल्याण योजना, मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, और जितनी योजनाएं हैं, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, वो समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण, और सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया, उससे भी बड़ा एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, जो लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ने के लिए 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार होगा, आने वाले समय में ये काम होगा।
1: माननीय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विभिन्न योजनाओं, हिमाचल प्रदेश के विकास, जन कल्याणकारी पहलों तथा भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष श्रृंखला। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज, लोकसभा सांसद से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी धर्मशाला। हम आकाश
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज से भेंट वार्ता। ये प्रसारण आपने आकाशवाणी शिमला से सुना। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:27 और पूरे 45 सेकेंड हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। स्वर अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के, गीत रचना समीर की और संगीत ए आर रहमान का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: ये आवाज है अलका याग्निक की, फिल्म का नाम है हमराज, गीतकार हैं सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उलझन के लिए।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

वासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए।
1: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रंगे गजल।

गजलों की रंगीन महफिल सजाने आए हैं। कुछ तुम्हारी सुनने तो कुछ अपने दिल की सुनाने आए हैं।

कहते हैं आंखें हाले दिल बयां करती है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, ये सारी कहानी खुद ही कह देती हैं।

ना जाने कैसी बेताबी सी है दिल में, जब तुम होते हो पास तो यूं लगता है जिंदगी मुकम्मल है, पर अगर तुम चले जाते हो दूर कहीं तो सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है।

रंगे गजल कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर से FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अभी आप सुन रहे थे रंगे गजल कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आपका चहेता कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

अजी, दुनिया बदल जाती है, हर नज़ारा बदल जाता है। किसी के ज़िंदगी में आ जाने से ये ज़िंदगी ही बदल जाती है, पूरा जहान बदल जाता है।

जी दोस्तों, इस समय आप बने हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। सुन रहे हैं आपका चहिता कार्यक्रम चांदनी रातें।

0: दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम चांदनी रातें। इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर पूरा हो रहा है। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए नगमे मोहब्बत के। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख

0: व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रथा 5:58 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।